0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: तुम्हारी पासे छे सुंदर मजानी कविताओ, गजल के शेर, शायरी
3: अथवा तो तुम्हें कई लगता हो साहित्य, साहित्य मा वार्ताओ, तो ए रजू करवा माटे तुमने प्लेटफॉर्म जोये छे तो ए प्लेटफॉर्म अमे आपीशु।
2: रेडियो पालनपुर पर जो तुम्हारा में सिंगिंग टैलेंट छे के पछी कोई पण वाद्य ने तुम वगाड़ी जानो छो, तो आप सब माटे पण प्लेटफॉर्म छे
3: रेडियो पालनपुर। तमे सारू लखो छो तमने मोकलावी शको छो अथवा तो रूबरू अहिया आवीने रिकॉर्ड पण करी शको छो, परंतु हां एनी जानकारी अमने पहला थी आपवी पड़शे अमारा रेडियो पालनपुर ना व्हाट्सएप नंबर पर 9512966888 पर।
2: आपनो आवाज अपना सब सुधी पहुंचाड़वानु काम करशे रेडियो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज। मस्त रहो, व्यस्त रहो, सांभळता रहो
3: रेडियो पालनपुर।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: देंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: गौरव श्रीवास्तव के साथ और आज के इस बड़े जबरदस्त एपिसोड में 80 की दहाई में, यानी कि 80 के दशक में जो है वो गाने जो जीते और वो गाने जो जीतते जीतते रह गए, जैसे कहते हैं ना विनर और रनर अप, तो जो पहला गाना है जो विजयी हुआ, अवार्ड मिला जिसे, वो गाना खयाम साहब ने बनाया, गुलजार साहब ने लिखा, किशोर दा ने गाया। और दूसरा जो बिल्कुल पीछे रह गया जरा सा, वो किशोरदा ने ही गाया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उसका संगीत दिया और बख्शी साहब ने उसके बोल लिखे, आनंद बख्शी साहब ने। अब ये तो मैंने आपको बता दिया है, अब आप गाने सुनेंगे तो यकीनन बड़ा मज़ा आएगा। और ये तमाम गाने जो हैं कारवां क्लासिक के, ये सारेगामा कारवां के 5000 गानों का जो नया तोहफा है उनमें से चुन के मैं लाया हूँ। अच्छा, खयाम साहब का ज़रा जिक्र करूँगा क्योंकि भाई विजेता उनका गाना हुआ था। वो दरअसल संगीतकार बनना ही नहीं चाहते थे, हाँ वो तो केएल साइकिल बनना चाहते थे। 10-11 साल की इनकी उम्र थी और ठान लिया था कि मुझे केएल सहगल बनना है, क्योंकि सहगल साहब की फिल्मों से ये खासे मुतासर थे और इस चक्कर में घर से भाग भी गए थे। अपने चाचा जान के यहाँ पहुँचे थे ये सोच के कि भाई मुझे एक्टर बनना है, केएल सहगल बनना है। लेकिन इनकी संगीत की शिक्षा वगैरह हुई और उसके बाद भी इनके मन में यही ख्याल था कि भाई आगे जाकर ये अभिनेता ही बनेंगे, लेकिन संगीत ने फिर इन्हें इस तरह से पकड़ा कि वो अभिनय का जो भूत है वो उतर गया और संगीत का जादू जो है वो चल गया। ऐसे और भी कुछ बड़े निराले किस्से जो हैं आज इस एपिसोड में आपके साथ बांटे जाएंगे।

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: तुमने कभी किसी से प्यार किया?
2: किया।
1: कभी किसी को

गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप कुछ बड़े निराले गाने 80 की दहाई के। जी हाँ, एक है अवार्ड विनर और दूसरा जो है वो रनर अप हो गया, मतलब बस जीतते जीतते रह गया। उन गानों की जोड़ियां हैं आज के इस एपिसोड में। तो जिस गाने का मैं अभी जिक्र करने वाला हूं जो विजेता बना, वो दरअसल अमित कुमार साहब ने गाया, पंचम दा ने संगीत दिया, आनंद बख्शी साहब ने बोल लिखे। अब हैरानी इस बात की होती है कि अमित कुमार साहब को तो बहुत पहले 70 की दहाई में मौका मिल गया था, हाँ, और फिल्म बॉबी के गाने जो हैं ऐसा माना जा रहा था कि वो अमित कुमार साहब गाएंगे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीत देने वाले थे। लेकिन न जाने क्या हुआ, अमित साहब जो रहे वो ज़रा घबरा से गए, वो मुंबई में ही नहीं थे, वो कलकत्ता चले गए कि नहीं नहीं नहीं मैं नहीं गा पाऊंगा। और फिर मौका मिला था शैलेंद्र सिंह साहब को, हाँ, तो फिर वो ऋषि कपूर साहब की आवाज़ बन गए। लेकिन 80 के दशक की शुरुआत में कुमार गौरव और विजेता पंडित स्टारर लव स्टोरी में अमित कुमार साहब की आवाज़ ने कमाल कर दिया था। हाँ, गाना भी आप समझ गए जो है, मैं चाहता हूँ इसे आप सुने। और ये तमाम गाने जो हैं वो मैं सारे गामा कारवां जो 5000 गानों का नया तोहफा है उसमें से चुन के लाया हूँ। हाँ, तो बड़े चुनिंदा ये गाने हैं और कुछ बड़े निराले किस्से भी आपका इंतजार कर रहे हैं।

गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। कुछ बड़े जबरदस्त गाने सारेगा कारवां जो 5000 गानों का जो नायाब तोहफा है उनमें से मैं चुन के लाया हूं। और आज की जो ये फहरिस्त है उसमें एक गाना जो है वो विजेता और दूसरा बस जीतते जीतते रह गया, और वक्त जो है वो 80 की दहाई का है। हाँ, 80 का दशक जो है उसकी उस दशक की फिल्में, उस दशक के गाने। अभी जो गाना, जो विजेता गाना है वो तो आप सुनेंगे, परवीन सुल्ताना जी का गाया हुआ, मजरू साहब का लिखा हुआ, आर डी बर्मन साहब ने संगीत दिया, यकीनन बड़ा मज़ा भी आएगा जब आप सुनेंगे। लेकिन जो गाना रह गया, उस गाने की बड़ी दिलचस्प एक कहानी है कि लिखा तो हरिवंश राय बच्चन साहब, और मतलब एक बहुत पहले लिख दिया था, और कल्याण जी आनंद जी ने फिर इस गाने का उपयोग किया फिल्म लावारिस। अब जब साहब इस गाने का पिक्चराइजेशन हुआ, हाँ, तो बच्चन साहब ने अच्छी एक्टिंग तो करी थी, सारा काम बड़ा अच्छा ही था, लेकिन इस गाने के पिक्चराइजेशन के दौरान बच्चन साहब की शरीक हयात जया जी बड़ी नाराज़ हो गई थी। हाँ, इसके दो वर्जन हैं, जो गाना जीतते जीतते रह गया वो अलका याग्निक जी द्वारा गाया गाना रहा, और एक वर्जन अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़ में। तो जया जी इतनी खफा हो गई कि ये क्या, ये इस तरह के लिबास में और औरत के भेष में जो हैं अमिताभ बच्चन, इतने बड़े सुपरस्टार स्क्रीन पे ये काम कर रहे हैं। और ऐसा भी कहा गया कि वो चली गई थी उठ के, इतना नाराज़ हो गई थी। लेकिन आगे जाकर स्टेज शो पर, स्टेज शो जब अमिताभ बच्चन साहब और जया जी किया करते थे, तब इस गाने पर वो थिरकती हुई थी बच्चन साहब के साथ। हाँ, तो बड़े ज़बरदस्त ये किस्से हैं साहब, और वो गाना कौन सा वो भी आप समझिए। तो चलिए साहब, एक तो जीता हुआ गाना और एक जीतते जीतते रह गया गाना जो है वो ज़रा सुन लेते हैं।

गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। और आज के इस एपिसोड में जो फेहरिस्त है ये उन गानों की है जिसमें से एक विजेता और दूसरा जीतते जीतते रह गया। वक्त है 80s का, 80 की दहाई। हाँ, तो ये मैं आपको बताऊं कि जो गाना आप सुनेंगे वो विजेता गाना है, लेकिन बहुत पहले भी रियलिटी शोज तो नहीं कह सकते, पर हाँ टैलेंट हंट हुआ करते थे। आजकल तो बहुत रियलिटी शोज का मामला रहता है और एक से बढ़कर एक आवाज़ सामने आती है, बड़े मौके मिलते हैं। पर गुजरे वक्त में फिल्म इंडस्ट्री अक्सर तलाशा करती थी कि एक नई आवाज़ मिले, है ना, और नए कलाकार भी मिले, इस तरह का हिसाब किताब होता था। तो मर्फी रेडियो कॉन्टेस्ट एक हुआ करता था। उस रेडियो कॉन्टेस्ट में दो आवाज़ें चुनी गई थी, एक पुरुष यानी कि महेंद्र कपूर साहब, उनकी आवाज़ चुनी गई, और एक महिला यानी कि आरती मुखर्जी। हाँ, तो आवाजें चुन तो ली गई, लेकिन बहुत वक्त लगा आरती मुखर्जी को एक अवार्ड जीतने में। और एक बड़ा जबरदस्त गाना इन्होंने गाया, पंचम दा ने इसका संगीत दिया था, गुलजार साहब ने लिखा। हाँ, और ये गाना वाकई बेजोड़ है। और आरती मुखर्जी को जब ये अवार्ड मिला तो सबने ही बहुत तारीफ की, अरे वाह, एक तो बड़ी मुख्तलिफ आवाज और गाना भी बड़ा जबरदस्त गाया। और जो गाना रह गया जीतते जीतते वो अनुराधा पौडवाल जी ने गाया। हाँ, तो ये दोनों ही गाने आप सुनिए, एक विजेता, एक जो जीतते जीतते रह गया, और कुछ बड़े जबरदस्त किस्से जो हैं वो आपका साथ यकीनन निभाते रहेंगे।

नेट हो या ना हो, रेडियो तो बजता रहेगा आपके दिल की धड़कनों में, और इसे धड़कते रखेंगे हम, यानी कि रेडियो पालमपुर 90.4 FM। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर 90.4 FM।

गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप कुछ बड़े जबरदस्त गाने 80 के दशक के, 80 की दहाई के, एक विजेता और एक जो जीतते जीतते रह गया। और ये जो दो गाने मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये दोनों एक ही फिल्म के हैं, एक ही गायक ने गाए हैं, किशोर कुमार। हाँ, संगीतकार तो यकीनन एक ही होंगे, पपीदा, लेकिन गीतकार अलग अलग। हाँ, तो बहुत ज़बरदस्त फिल्म मेकर, निर्माता, निर्देशक प्रकाश मेहरा, वो लिखते भी बहुत अच्छा थे। तो प्रकाश मेहरा साहब का लिखा हुआ गाना जीता और उन्हीं की फिल्म में अनजान साहब ने जब गाना लिखा, वो गाना जीते जीते रह गया, दोनों ही नॉमिनेट हुए थे। फिल्म शराबी। अच्छा, प्रकाश मेहरा साहब के बारे में ये बात बड़ी दिलचस्प है, बतानी भी चाहिए। ये बनना चाहते थे कि भाई किसी तरह से मैं कहानीकार बन जाऊँ, फिल्मों में आऊँ, नाटक वगैरह करूँ, ये पूरा मामला था। लेकिन घर से मुखालफत होगी, ये डर था इन्हें, तो बिजनौर के ये रहने वाले। तो बिजनौर में इनकी जो, जिसे कहते हैं ना जनेऊ सेरेमनी जिसे कहा जाता है, जब वो हुई तो रिश्तेदार जो हैं वो कई पैसे, बहुत से पैसे देते हैं, नेक देते हैं ना, लिफाफे आते हैं ना, तो आजकल भी मिलते हैं। तो प्रकाश मेहरा साहब को वो लिफाफे मिले और उन्होंने वो पैसे वैसे ज़रा इकट्ठे करे और एक चिट्ठी लिखी। तो चिट्ठी में लिखा कि मैं बम्बई जा रहा हूँ, उस वक्त बम्बई कहा जाता था, मुंबई है, मैं बम्बई जा रहा हूँ कभी ना वापस लौट के आने के लिए, और अपने वायदे पे ये कायम रहे। हाँ, तो फिल्में भी खूब बनाई, बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया, और एंग्री यंग मैन इनकी फिल्म से ही उठकर आया था, जंजीर। जी हाँ, अमिताभ बच्चन साहब उस फिल्म में बहुत ज़बरदस्त भूमिका निभाते नजर आए थे, और प्रकाश मेहरा साहब को जो है उनका लिखा जो गाना है उसे अवार्ड भी मिला। गाना कौन सा है आप सुन लो। दूसरा गाना जो है वो ज़रा तड़कता भड़कता है, पहला गाना ज़रा संजीदा है। हाँ, सुनिए इस गाने को, और ऐसे और भी कुछ बड़े ज़बरदस्त किस्से, कुछ बड़े अनोखे गाने आप तक पहुँचते रहेंगे।

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: आज मैं उस जमाने की बात करने वाली हूँ जिस जमाने में आप मैसेज नहीं किया करते थे। आप अगर किसी इंसान को मैसेज पहुंचाना चाहते हो तो पत्र यानी कि लेटर्स का सहारा लेते थे। हाँ, मैं उस जमाने की बात कर रही हूँ जिस जमाने में हम मोबाइल यूज नहीं किया करते थे लेकिन पत्र लेटर्स लिखा करते थे। तो चलो आज पत्रों से जुड़ी कुछ सुनहरी यादें मैं आपके सामने रखती हूँ। उस वक्त जब पोस्टमैन अपने घर आते थे उनके आने की खुशी कुछ और ही हुआ करती थी। बड़े से झोले में यानी कि उनके बड़े से थैले में सैकड़ों चिट्ठियां हुआ करती थी। जब वो आते थे तब हर कोई ये गाना तो बिल्कुल ही गाता था, डाकिया डाक लाया, और हाँ डाकिया आ गया है, ऐसा हर कोई ये कहकर उनको घेर लिया करते थे कि क्या उनका भी कोई संदेश आया है कि नहीं ये भी पूछा करते थे।

उस समय दो रंग के पोस्ट आया करती थी, एक तो नीला रंग और पीले रंग का। इस पोस्ट को एक बार पढ़कर मन बिल्कुल भी नहीं भरता था, क्योंकि हर शब्द दिल से जुड़ा हुआ लगता था। ऐसे शब्द को पढ़ते समय सामने वाले का चेहरा आंखों के सामने हुआ करता था और ऐसा लगता था कि वो इंसान आपके सामने है और आपसे बातें कर रहा है। कुछ ऐसा ही था वह चिट्ठियों को

लेकर लिखने का दौर जो आज कहीं गुमसा हो गया है। नहीं, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वो चिट्ठी का जमाना कहीं खो गया है। ये गाना याद नहीं आता।

अब वो दौर तो आज के जमाने में खत्म सा हो चला है। अब तो पत्र लिखने का डे भी मनाया जाता है, जैसे कि 1 सितंबर, यानी कि वर्ल्ड लेटर राइटिंग डे।

वैसे तो अब चिट्ठियों का चलन नहीं है, वो दौर अब चला गया है जब चिट्ठियां लिखी जाती थी और पत्र व्यवहार हुआ करती थी। लेकिन वो लोग अभी भी है जिनके पास इतने सारे एक्सपीरियंस है जो वो शेयर करना चाहते हैं। मैंने भी ऐसे ही कुछ लोगों से बात की जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। उनमें से एक ने बताया कि पुराने समय में चिट्ठी दिल से जुड़ी होती थी। उन्होंने बताया कि उनका मायका बहुत दूर है, पिता से हमेशा उनको जुड़ाव रहा था, लेकिन इसीलिए शादी के बाद जब ज्यादा वो चिट्ठी का इंतजार करती थी तो माँ के बजाय वो उनको इंतजार था अपने पापा की चिट्ठियों का, और पिता की चिट्ठी हफ्ते में दो बार अवश्य आया करती थी। उन चिट्ठियों को आज भी उन्होंने संजोकर रखा हुआ है एक संदूक में। जब भी उनको याद आती है अपने पिता की उनकी बातों की तो वो चिट्ठियां निकाल कर पढ़ लेती है। तब उनको यही लगता है कि उनके पापा उनके साथ बात कर रहे हैं।

जब बातें हो रही थी तब लगा कि चलो चिट्ठियों को लेकर और आज के डिजिटल युग को लेकर कुछ बात की जाए तो क्या अंतर रहेगा, क्या डिफरेंस आएगा। तब मैंने एक प्रोफेसर से भी बात की, कॉलेज प्रोफेसर है, और उनका ये कहना था पहले मोबाइल और फ़ोन नहीं था, इसके कारण परिवार और दूर रहने वाले दोस्तों के बीच एक चिट्ठी ही सहारा हुआ करती थी। हर शब्द में ऐसा लगता था मानो वह व्यक्ति सामने उपस्थित होकर यानी कि आपके सामने खड़ा होकर आपके साथ बात कर रहा है। वो फीलिंग आती थी, वो इमोशन आपको फील होते थे। लेकिन जब से सोशल मीडिया आ गया है यानी कि मैसेज की जो रीत आ गई है, तब से ये इमोशन बयां करने वाली जो रीत है ना, वो कहीं ना कहीं फेल हो रही है। अब तो अगर मैसेज आए तो इग्नोर किया जाता है, मैसेज आए तो अनसीन किया जाता है, या तो देख लिया जाता है लेकिन उसके साथ इमोशन का कुछ लेना देना बहुत कम हो गया है।

मैंने एक ऐसे इंसान से भी बात की जिन्होंने पढ़ाई के लिए अपना गांव छोड़ा था। उन्होंने बोला कि पढ़ाई के वक्त जब माँ पिता और बड़े भाई को वो चिट्ठियाँ लिखते थे तब काफ़ी बातें हुआ करती थी। जब वो फिल्म देखने जाते थे तो पूरी फिल्म की कहानी, फिल्म में कौन हीरो है कौन विलन है, फिल्म से जुड़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें वो चिट्ठी में लिखकर अपने माँ बाबा को पहुँचाते थे। अपने भाई से बड़े ही अच्छी तरीके से बातें किया करते थे। जो बातें वो बोलकर नहीं कह पाते थे वो चिट्ठियों के जरिए अपने भाई से कह दिया करते थे। अब तो वो सुनहरे दौर कहीं खो चुके हैं। इसके साथ ही दूसरी पुरानी बातें भी डिजिटल युग में गुम हो गई है ऐसा लगता है।

0: आपको क्या लगता है, क्या ये बातें कहीं गुम हो चुकी है? अगर ऐसा लगे तो आप भी लिख दीजिए एक पत्र, एक लेटर अपने उस प्रिय और अपने चाहने वाले उस शख्स के लिए जिसको आपको कुछ कहना है जो आप कह नहीं सकते, तो लिख दीजिए। भले ही उस पत्र को आप भेजे नहीं, लेकिन ट्राई जरूर कीजिए। शायद आपको भी उस जमाने का, उस दौर का वो हिस्सा समझ में आए।
1: Liquid music with Mel.

पक्का पालनपुरी नी ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

0: મસ્ત રહો, વ્યસ્ત રહો, સાંભળતા રહો રેડિયો પાલનપુર 90.4 FM. ઓ મારા પાલનપુર.
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और

खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। तो करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक खूबसूरत विचार से, जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसी जी ने। लिखते हैं, ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक सच्चा व्यवहार और प्रेम ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। आप सबका आभार संदेश भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी। गांव डांगरी जिला जैसलमेर से बाबूराम जयपाल। ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी, सादर नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व जो गीत कार्यक्रमों में जवानों उठो, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के जीवन पर प्रकाश डाला, वो बेहद सराहनीय और प्रशंसनीय लगा। सबसे बढ़िया मुझे देशभक्ति गीत लगे। आप सबके उम्दा संदेशों के लिए एक बार फिर से मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। श्रोताओं, जैसा कि आपको पता है, इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया भर की उन मजेदार लेकिन साथ ही साथ गंभीर परंपराओं के बारे में रोचक जानकारियां। तो श्रोता मित्रों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी अजब गजब परंपराओं की। अब तक हमने बात की उन जंगलों की, जहाँ लोगों को संदेश दिया जाता है कि जंगल मत काटो। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे जंगल की जिसे काटना तो दूर कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। पिछले दो दिनों में हमने जापान और रूस का भ्रमण किया। आइए अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत के मेघालय में। वहाँ की खासी जनजाति एक अद्भुत पर्यावरण से जुड़ी परंपरा का पालन करती है। वहाँ के कुछ विशेष जंगलों को लाव किंगटांग कहते हैं। खासी भाषा में लाव यानी वन और किंगटांग यानी पवित्र होता है, यानी पवित्र वन या जंगल। इसे लेकर एक सुंदर लोक कथा है जो अलग अलग प्रकार से सुनाई जाती है। बहुत पहले की बात है, एक गाँव के किनारे घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, जंगली फूल, पक्षियों की आवाजें और बीच से बहती छोटी सी जलधारा। गांव के बच्चे उस जंगल को देखकर कहते, ये हमारा जंगल है। लेकिन गांव के बुजुर्ग उन्हें रोक कर कहते, नहीं, ये हमारा जंगल नहीं है, हम तो बस इसके रखवाले हैं। गांव के मुखिया और बुजुर्ग

0: सबको यही समझाते, जंगल हमारा नहीं है, ये प्रकृति का वो वरदान है जिसकी रक्षा के लिए हमें नियुक्त किया गया है। लोक कथा कहती है, एक दिन गांव में एक व्यक्ति को लकड़ी की जरूरत पड़ी। उसने सोचा, जंगल इतना बड़ा है, अगर एक पेड़ काट भी दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल में पहुंचा। जैसे ही उसने पेड़ पर पहला प्रहार करने के लिए हाथ उठाया, उसे बुजुर्ग की बात याद आई, कुछ लेने से पहले इस जंगल से जरूर पूछना, क्योंकि ये जंगल तुम्हारा नहीं है। उसने कुल्हाड़ी नीचे रख दी। जितने भी लोग जंगल में पेड़ काटने आते, यदि उन्हें अपने बुजुर्गों की बात याद आ जाती तो वे भी अपनी कुल्हाड़ी वहीं छोड़ जाते। समय बीतता गया, एक पीढ़ी गई, दूसरी आई, फिर तीसरी। लोगों ने घर बनाए, खेती की, बाजार बनाए, लेकिन उस पवित्र जंगल को वैसा ही रहने दिया। न कोई पेड़ काटता, न शिकार करता, न वहां से लकड़ी उठाता, और जंगल वो हर वर्ष और घना होता चला गया। उसकी जड़ें मिट्टी को थामे रहीं, उसकी जड़ों ने और वनस्पतियों ने जल स्रोतों को संभाला, पक्षियों और छोटे जीवों को आश्रय मिला। लोग कहते, इस गांव में सबसे ज्यादा हरियाली है। श्रोताओं ध्यान से सुनिए, जब हम कहते हैं पेड़ लगाइए, जंगल बचाइए, जल बचाइए, तो खासी समुदाय की ये पुरानी परंपरा हमें एक और गहरी बात सिखाती है। वो ये कि प्रकृति की रक्षा केवल नियम बनाकर नहीं, उसके प्रति सम्मान पैदा करके भी की जा सकती है, क्योंकि नियमों से जो काम नहीं होते वे सम्मान देकर आसानी से किए जा सकते हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, लोक कथा बताती है कि वहां एक जंगल को बचाने के लिए हजारों पहरेदारों या वन रक्षकों की जरूरत नहीं पड़ी, बस एक विचार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, हम जंगल के मालिक नहीं, रखवाले हैं। और शायद आज हमारी धरती को इसी विचार की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो खासी समुदाय के पुराने लोगों ने दिया है, और वो विचार है, ये जंगल हमारा नहीं है, हम जंगल के रखवाले हैं। तो श्रोताओं, आप तो सुविचार भेजते ही रहते हैं, आज सुनिए उमंग कार्यक्रम की ओर से ये सुविचार। आज अगर हम परिवार और आसपास के एक पेड़ को सिर्फ पेड़ न मानकर परिवार का सदस्य मान लें, तो दुनिया और ज्यादा खुशहाल बन जाएगी। अगर ये विचार आज हम धारण कर लें, तो शायद हमारी धरती थोड़ी और हरी हो जाए। शायद आने वाली पीढ़ियां हमें धन्यवाद दें कि हमने उन्हें केवल इमारतें नहीं, एक जीवित धरती भी विरासत में दी है। तो श्रोता मित्रों, कैसी लगी जानकारी पवित्र वन की, जरूर लिखकर बताइएगा। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। श्रोताओं, आज का प्रश्न है, खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है। आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करें। किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल YouTube को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है शेर और चूहे की दोस्ती। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि कभी भी किसी को तुच्छ, निकृष्ट और छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी कभी भी किसी के काम आ सकता है।
1: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना, एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा, ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद, धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए।
4: शेर और चूहे की दोस्ती, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब सुनिए अबला को सबला बनाने वाली अबला। ये कार्यक्रम सुप्रसिद्ध भौतिक और वनस्पति विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस की पत्नी श्रीमती अबला बोस के जीवन और नारी उत्थान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताता है।
0: इतिहास में बहुत सारी नायिकाएं ऐसी भी हैं जिन्हें शायद बहुत अधिक स्मरण नहीं किया जाता, जिनका नाम दुनिया के प्रसिद्ध लोगों की सूची में नहीं मिलता, उनकी सराहना में प्रशस्ति गान नहीं लिखे गए और न ही उन्होंने अखबारों की सुर्खियां बटोरी, लेकिन उन्होंने जो कर दिखाया उसकी मिसाल दुर्लभ है।
5: जनस्मृति से भले ही वे नाम धूमिल और विस्मृत हो जाएं, लेकिन इतिहास उन्हें आदर सहित याद रखता है और कभी ना कभी उन्हें आभार सहित प्रकट अवश्य कर देता है। ऐसा ही एक नाम है अबला बोस का।
0: उन्नीसवीं सदी का अविभाजित भारत, देश में बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार, दहेज जैसी कई स्त्री विरोधी कुप्रथाएं थीं जिन्हें चाहकर भी समाप्त नहीं किया जा सका था। ऐसे समय में प्रादुर्भाव हुआ बंगाल की महान समाज सुधारक, शिक्षाविद, संघर्षशील और नारी अधिकारवादी विदुषी अबला बोस का।
5: उन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने का बीड़ा उठाया, लेकिन कौन थी अबला बोस? बता दें

0: वे विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस की पत्नी थीं। जगदीश चंद्र बोस पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिकी और जीव भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया।
1: कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। यदि कहा जाए कि महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की सफलता के पीछे भी उनकी पत्नी अबला बोस का हाथ था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अबला बोस का जन्म 8 अगस्त 1865 को बरिशाल में हुआ था। बरिशाल तब अविभाजित भारत का हिस्सा था और अब ये बांग्लादेश में है।

0: अबला के पिता दुर्गा मोहन दास ब्रह्म समाज के प्रसिद्ध नेता और समाज सुधारक थे। अबला की माँ ब्रह्ममयी परित्यक्त विधवा और घरेलू हिंसा के शिकार स्त्रियों के उत्थान के लिए काम किया करती थी। एक दिन की बात है, अबला की माँ ब्रह्ममयी किसी मोहल्ले में रहने वाली मजदूर स्त्रियों का हाल चाल पूछने गई थी। उनके साथ अबला भी थी।
1: पानी ले आ रहा है?
0: कल रात फिर भी कर आ गया।
2: क्या बताऊं दीदी, रोज का यही है। हम औरतों की तो हालत बहुत बुरी है दीदी।
0: ना कमाता है ना धमाता है, ऊपर से रोज जमाता है।
2: दीदी
0: अरे इनको तो
2: दीदी।
3: अरे आलोका तुम सब ठीक तो है ना?
2: नहीं दीदी, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है।
3: अरे
2: जिस दिन आप परिवार वालों को समझाने आई थी,
3: हाँ हाँ,
2: उसके बाद कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन अब फिर।
3: अब फिर क्या?
2: मुझको कहते हैं तू अपने आदमी को खा गई।
3: अरे?
2: हमारे साथ नहीं रह सकती, कहीं और अपना इंतजाम कर ले। कल रात मुझे घर से निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊँ दीदी, मायके में भी कोई स्वीकार नहीं करेगा।
3: रो मत आलोका, आज तुम नारी रात्रि पाठशाला में ही रुक जाओ। मैं सारी महिलाओं के साथ तुम्हारे घर जाऊंगी। बहनों कल सभी तैयार रहें।
4: जी दीदी।
3: हम सब आलोका के घर चलेंगे।
4: बिल्कुल चलेंगे।
3: आज इसके साथ हो रहा है, कल किसी के भी साथ हो सकता है।
4: जी दीदी।
2: जी दीदी।
4: हम सब तैयार हैं।
5: उन दिनों स्वामी विवेकानंद ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सिस्टर निवेदिता जैसे प्रगतिशील विचारों के प्रभावशाली लोगों के कारण समाज में परिवर्तन आ रहा था। इस कारण ब्रह्ममयी दीदी के नेतृत्व में आलोका जैसी अनेक स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा हो सकी।
0: बालिका अबला ने ऐसी बहुत सी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था। वो ऐसे वातावरण और परिवार में पली जहां नारी उत्थान के लिए काम किया जाता था, नारियों को सशक्त स्वावलंबी और शिक्षित बनाने पर जोर दिया जाता था।
5: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना हुई। वे मात्र 10 वर्ष की थी कि तभी उनकी माता का देहांत हो गया। लेकिन अबला के बाल मन पर उनकी माता की जो छाप पड़ी वो आजीवन उनके साथ रही।
0: प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने बंग महिला विद्यालय और फिर बैथ्यून कॉलेज में दाखिला लिया और फिर मेडिसिन की पढ़ाई के लिए वे मद्रास चली गईं, जिसे अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है।
5: लेकिन सेहत खराब होने के कारण वे बंगाल लौट आईं और कभी वापस चेन्नई नहीं गईं। वापस नहीं जाने का कारण था 23 वर्ष की आयु में उनकी सर जगदीश चंद्र बोस से शादी। ये था वर्ष 1887 का।

0: समय बदल रहा था। व्याख्यान देने और शोध कार्य के लिए उनके पति सर जगदीश चंद्र बोस को अक्सर विदेश जाना होता था, तो वे भी उनके साथ हुआ करती थीं।
1: एक बार की बात है, शोध के सिलसिले में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए।

0: यूरोप और अमेरिका विदेश यात्राओं के दौरान उन्होंने उन देशों की महिलाओं की सशक्त सामाजिक, आर्थिक और रहन सहन की स्थिति को ध्यान से देखा। अब लाबोस ने देखा कि यहाँ स्त्रियों की दशा बहुत उन्नत है। किसी भी कार्यक्षेत्र और विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी उन्होंने देखा कि जितने पुरुष कर्मी थे लगभग उतनी ही स्त्रियां भी थीं।
1: और यहीं से शुरू हुआ उनका आगे का सफर, जिसने एक गौरवशाली इतिहास रच दिया। एक और महत्वपूर्ण घटना ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। 1917 में डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस को नाइटहुड की उपाधि मिली।
0: लंदन का रॉयल अल्बर्ट हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बहुत से देशों के वैज्ञानिक इस अवसर पर निमंत्रित थे।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, Royal Society of London welcomes you all at this occasion. We have gathered here to facilitate Dr. Jagdish Chandra Bose, the great scientist from India. Now, I request the President of Royal Society to confer knighthood to Dr. Bose. From today, he will be the esteemed Fellow of the Royal Society. Now, I request him to kindly come on the dais to receive the knighthood. And ladies and gentlemen, it is said, behind every successful man, there is a woman. So now I request the great woman, Lady Bose, his wife, to come on the dais. Give this lady a standing ovation.
0: तब से वे लेडी बोस के नाम से जानी जाने लगी। उस रात डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस अपनी पत्नी अबला बोस के साथ भोजन के बाद बातें कर रहे थे।
3: वाह, सचमुच खाना तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट था ना?
4: जी।
3: बैठो। अच्छा, एक बात बताओ। आखिर बात क्या है? आज तुम थोड़ी चुप चुप सी लग रही हो।
4: नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं कुछ सोच रही थी।
3: सोच रही थी? क्या?
4: मैं सोच रही थी कि यहाँ की स्त्रियाँ कितनी स्वतंत्र और सशक्त हैं। मेरे कहने का मतलब है, यहाँ समाज में उनका बराबर का स्थान है। उनका भी सम्मान उतना ही होता है जितना कि पुरुषों का होता है।
3: बिल्कुल।
4: आपने देखा नहीं, आज आपके नाइटहुड सम्मान के दौरान आपकी पत्नी होने के नाते मुझे कितना सम्मान मिला।
3: हाँ, वो तो है अबला। इसीलिए इन लोगों ने इतनी तरक्की की है।
4: वो तो है। देखिए, मुझे लगता है कि मुझे अपने देश की स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए।
3: हाँ।
4: हमें उन्हें शिक्षित और स्वावलंबी बनाने की जरूरत है।
3: बिल्कुल।
4: आपको नहीं लगता?
3: लगता है अबला, बिल्कुल लगता है। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात होगी। देखो अबला, तुम जो कुछ भी कर सकती हो जरूर करो। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
4: हाँ, हमें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा ही हमारे देश की स्त्रियों को उनका अस्तित्व दिलाएगी।
3: सही कहा तुमने। मुझे तुम पर गर्व है अबला। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा।

0: मुझे भी तो आप पर गर्व है। आपने विज्ञान में बड़ी साधना की है और अपना आसमान ढूंढ लिया है। अब मुझे अपना आसमान ढूंढना है। एक ऐसा आसमान जहां हमारे देश की स्त्रियां उड़ान भर सकेंगी, इज्जत से किसी आजाद परिंदे की तरह।
1: ऐसा ही होगा अबला, बिल्कुल ऐसा ही होगा।

0: फिर क्या था। यूरोप की यात्रा से वापस आकर वे लग गईं अपने अभियान। अशिक्षा और पुरुषों पर आर्थिक और सामाजिक निर्भरता के कारण भारत में उस समय स्त्रियों की दशा दयनीय थी।
1: उन्होंने संघर्ष किया और 1919 में नारी शिक्षा समिति की स्थापना की, जिसका काम प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना, उनके लिए पाठ्य पुस्तकों को तैयार करना, मातृत्व बाल केंद्र और विधवाओं हेतु कल्याण केंद्र खोलना था। उनके द्वारा खोले गए व्यावसायिक स्कूलों में विधवा और आर्थिक रूप से कमजोर स्त्रियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और चमड़े का काम सिखाया जाता था।
0: इतना ही नहीं, अबला बोस के प्रयासों से कलकत्ता और झारग्राम में महिलाओं के उत्थान के उद्देश्य से महिला शिल्प केंद्र की स्थापना की गई।
1: अबला बोस के प्रयासों को देखते हुए बंगाल महिला शिक्षा लीग ने उन्हें अपना पहला अध्यक्ष बनाया। उनकी मेहनत रंग लाई और बंगाल में स्त्री शिक्षा के प्रति लोगों का नजरिया बदलने लगा। स्कूल जाने वाली बालिकाओं की संख्या बढ़ने लगी।
0: अबला यानी लेडी बोस को बड़ी खुशी होती जब स्त्रियां उन्हें बताती कि शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने से किस तरह उनके जीवन में खुशी आई है।
2: मेरी तो दुनिया ही बदल गई।
3: अरे दीदी, जब से बुनाई का काम सीखा है तब से घर वाला भी बड़ी इज्जत
2: है। जो बच्चे हैं ना, जब कमा के ले जाती हूँ।
4: दीदी, जिंदगी इतनी खुशहाल हो गई है कि क्या ही बताऊँ। जब से मैंने वो टोकरी बनानी शुरू की है, घर के कामों में भी बहुत मदद मिल जाती है।
2: देखो मेरा पर्स, ये मैंने ही बनाया है।
4: अरे अपनी बहुत खड़ी है, किसी के आगे क्यों मांगना। सही बात है, हमें नहीं मांगना चाहिए किसी से। अब तो हम अपना काम कर रही हैं, अब हम सशक्त बन रही हैं।
2: बिल्कुल।
0: इस समय तक अबला बोस देश की प्रभावशाली महिलाओं के संपर्क में आ चुकी थीं, जिनमें भारत कोकिला, सरोजिनी नायडू, रमाबाई रानाडे, सिस्टर निवेदिता जैसी महिलाएं प्रमुख थीं। उन दिनों देश में महिलाओं को मताधिकार देने की बात चल रही थी। साल 1921 में भारत में पहली बार बॉम्बे और मद्रास में महिलाओं को मताधिकार मिला।
1: अबला ने बंगाल की महिलाओं के लिए आवाज उठाई और 1925 आते आते बंगाल की महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा था,
5: मताधिकार के द्वारा अब बंगाल की महिलाएं भी समानता का अनुभव कर सकेंगी, ये सुनिश्चित कर सकेंगी कि उन्हें सम्मान पूर्वक जीने के लिए किसको चुनना है।

0: सन 1937 में उनके पति श्री जगदीश चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने उनसे वादा लिया कि नारी उत्थान के कार्य को वे निरंतर करती रहेंगी। अबला ने महिलाओं के हक में काम करना जारी रखा और उनके हित के लिए अथक प्रयत्न करती रहीं।
1: अपने जीवन के अंतिम समय में वो दार्जिलिंग में बस गईं। 26 अप्रैल 1951 को इस

महान महिला अधिकारवादी नेत्री लेडी अबला बोस का निधन हो गया। देश उनके अतुल्य योगदान को श्रद्धा सहित स्मरण करता है और अपना आभार प्रकट करता है।

FM, रेडियो बालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट केळवड़ी मंडल संचालित आ रेडियो स्टेशन पर तमारा प्रतिभाओ तमारा संदेशाओ अने तमारी वातों ने मोकली आपवा माटे तमे 90.4 FM रेडियो पालनपुर ना फेसबुक पेज पर जई शको छो अने तमारी वात ने त्यां पोस्ट करी शको छो। साथे साथे तमे अमने व्हाट्सएप पण करी शको छो। रेडियो पालनपुर पर तमारी वात ने पहोंचाड़वा माटे व्हाट्सएप नंबर छे 95-12-99-66-88। ફરી એકવાર નંબર હું તમને જણાવું છું 95-12-99-66-88 પર તમારા સંદેશાઓ અને પ્રતિભાવો મોકલી આપો પાલનપુરનો એકમાત્ર અવાજ એટલે કે રેડિયો પાલનપુર। મસ્ત રહો, વ્યસ્ત રહો, સાંભળતા રહો 90.4 FM રેડિયો પાલનપુર।

पक्का पालनपुरी नी ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

0: रेडियो पालनपुर।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

पक्का पालनपुरी नी ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी।

0: के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, अने सांभरता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।